अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बताने लगी। ये जो नाम जपदी है, परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी है, नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

प्रहलाद भगत करके याद करते हैं। उधर हरनाक्ष की तपस्या पूरी हुई, भगवान ने प्रत्यक्ष प्रगट हो

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली इसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष के मरण दे नाल ही

संडा मरका सारे बच्चिया ने कहन लगा बच्चियों पढ़ाई तू पहला जड़ा जरूरी सबक है वो तुसा सारे ने लिखना है ते बोलना है। सारे बच्चिया नु कहा अपनिया पटिया ते लिखो ते बोलो जले हर नाकश पले हर नाकश। हर नाकश ही रब है, हर नाकश ही भगवान है। ता उस वक्त जो प्रहलाद ने कहा कबीर।

जाए प्रहलाद बुलाए वेद ताए संडे मरके ने जदु शिकायत की थी ऐ राजन तेरा अपना लड़का तेरा नाम नहीं जपदा ताओ से वक्त

ना नाम जपना छड़िया ता हर नाकुश नू होर गुस्सा चढ़िया। फिर समझाया एक वरी तू राम नाम कहना बंद कर, मेरा कहना मान ले, तेनू मैं छड़ दिया।

पानी विच डोब के मार दियो। छपाइया ने प्रहलाद नू फड़िया, हाथ पैर बन के उच्ची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हू देख के भी डर लगता सी, छोटे जे बच्चे प्रहलाद नू चुक के नदी विच सुट

किनारे ते लग गया। हरनागश नु पता लगा कि मेरा लड़का प्रहलाद डुबिया नहीं। समझ ना आई हाले भी कि जिदी रखिया परमेश्वर करे उनु कौन मार सकदा है। पर फिर प्रहलाद नु बुला लिया ते गुस्से नाल कहा, तू राम नाम जपना बंद कर, मेरा नाम जप, नहीं ते अग विच साड़ के मार देंगा।

गोदी विच लै के बह जावांगी। मैनू वर है मैं ते सड़ना नहीं, पर लाल सड़ जावेगा। इस तरह कीता गया, लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। लकड़ां दे ढेर ते हरनाकश दी भैन होलकां बैठ गई। गोदी विच भगत प्रहलाद नूं

साढ़ेसवा हो गया ते नाल ही उजड़ी होलका सी वो भी साढ़ेसवा हो गई क्योंकि रब वर देंदा है भले वास्ते बुरा करन वास्ते नहीं होलका नु वर मिलिया सी भला करन वास्ते बुरा करना चाहिया ते होलका आप सड़ के सुआ हो गई पर लादी रखिया परमेश्वर ने की थी जेड़े भी लोग पावे समा बीत चुका है पावे समा चल रहे है पावे समा आवेगा समय में जेड़े भी लोग धर्मिया नु तंग कर दे ने उन्हां दा इसे तरह ही

अपने सामने खड़ा करके कहने लगा, प्रहलाद आखिरी मौके राम नाम छड़, मेरा नाम जप, नहीं ते तलवार दे नाल तेरा सिर वट देंगा।

जेते नु अपने रब दे भरोसा है। इस तत्ते थम जफी मार जेड़ा अग दी तरह सड़दा पे ते नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली।

तत्ता थम देख के ते भगवान ने कीड़ी दा रूप धार के थम ते तुरना शुरू कर दिता। पर बाणी कहंदी के प्रहलाद डोलिया नहीं, क्योंकि भगत कदी डोलदे नहीं।

भगवान ने हरनाकश नु अपनी बाहों में फड़ लिया, कमरे की दलीज विच आके भगवान बैठ गए। एक लत कमरे के अंदर, एक लत कमरे के बाहर रखी। हरनाकश नु अपने पट्टा ते भगवान

सरकीती हैं, ना आकाश से, ना दुपानी बीते हैं, ना सुखे थे, ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है। जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले के देख ले, ना मैं औरत हां ना आदमी। सारे वर पूरे अद्धा शरीर आदमी दा है, अद्धा शरीर शेर दा है। जदू हरनागस ने किया, हां भगवान जिन्ने वार मैं मंगे सन सारे पूरे ने। परमेश्वर बड़ा बेअंत है, गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वध रखदा है। की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे।

भगत कबीर सब नाल भी होया। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करदा। कुछ लोका ने कान भरे, सिकंदर लोधी ने भगत कबीर नु अपने दरबार च बुलाया। भगत कबीर साहब बनारस च रहा करदे सन। सिकंदर लोधी दे सामने होए, सिकंदर लोधी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है, तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़। कबीर साहब ने कहा, ऐ बादशाह परमेश्वर एक है, ओदे नाम कई नहीं, किसे नाम नाल भी उन्हों याद कर लो।

अपने सिपाहियां नु इस कबीर नु पढ़ो, एदे हाथ पैर बन्नो, इनू गंगा विच डोब के मार दियो। इस गल नु

गंगा ते डुबण वास्ते लै गए, पर मैं बड़ा हैरान होया इन्हां लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनूं

भी वह मजबूत है जेड़ा नाम नाल जुड़े है जेड़ा गुरु नाल जुड़े है। हाथ पैर ते बजे सन एक वड़ा सारा पत्थर कबीर साहब दे पेट नाल बन के इन्हां सिपाहियां ने कबीर साहब नूं

माता परमेश्वर ने उसे भी रखिया की थी। आखिर हार के सिकंदर लोधी बादशाह ने हिंदुस्तान का बादशाह जिदे अगे हिंदुस्तान दे लोग झुकदे ने डर के ए बादशाह उस बादशाह नु हाथ जोड़ के कबीर साहब दे चरणा दे मत्था टेकना पिया। उपदेश कीता है ऐ भाई उस परमेश्वर ते भरोसा रखो जेड़े अधर्मी ने एक वरी ते जुलम करदे ने पर समय नाल अधर्मियां दा नास हो जांदा है ते धर्मियां दी हमेशा परमेश्वर जित करांदा है। आओ भाई आपां इस परमेश्वर दा नाम जपिए ओदा सिमरन करिए ताकि आए हुए कष्ट दूर होन सुखां दी प्राप्ति होवे। आओ सारे उस परमेश्वर दा नाम जपिए नाम ना छड़िए जे नाम छड़िया ते दुखी रवांगे जे नाम जपांगे ते भगतां दी तरह सुखां दी प्राप्ति होवेगी।

के नाम तो बिना छुटकारा नहीं, नाम तो बिना कोई बाँह नहीं फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए है कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हेमकुंड दे निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा विच जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदियां सेवा सिमरन परपकार करदियां जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायगी। जो सिमरन करदियां उथे पहुंचदे हन भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन। कोई नाम दा नूर चढ़िया हुंदा, नाम दी लाली हुंदी है उन्हां दे मस्तक। ते फिर जी करदा है कि होर जपां, जप जप के समा बितावां। इसलिए ये अरदास करदे हन।

पवित्र खून वो पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जाना, बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जाना। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जिहड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वो भज गए, जिहड़े दुष्टां दी फौज सी वो भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्हां नूं पिस्तौल ते उन्हां रात ही खोले सी ते डंडे इन्हां ने हाथ ही फड़ाते सी, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आण बड़े। असीं डह सा कीर्तन कर बाबे नहीं साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डह सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानूं इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे सार देना, तीआं तुहाडीआं खिच के लै जाणीआं, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जाणी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकदे ते कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब थापी दित्ती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दिती, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वो इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर, जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ता हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग स्पच्छ बटो करकार कृपाण कम पावेंगे, निक्षे जिम केवर पर्वत ते ता सौ दिवाले पावेंगे, फल पाल पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया निक्षे जिम केर पर्वत ते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वो जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्होंने फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ने गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान होवा, ज्यो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुक्के, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर होवा, ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ दे पज पै पज के वह 5-7 पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजे हो। जदों उन्हें देखा दुष्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वो 4 नारियां सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 5-7 गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे वाले ऐ वेखण वाले भजन ते फिर एक उत्थे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी नू मारदे हां, ना असी बुढ़े नू मारदे हां, ना असी बच्चे नू मारदे हां, ना असी भजदे नू मारदे, असी भजदे नू ही मारदे, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तां असी इधर जाने जिहड़े आ आउंदे ने उन्हां नू छड्ड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे। है जी 12,000 दुष्ट ए सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्हों ने सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहते

पटक प्रम पजित दुख पर हर सुख सहज बिगासै सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह ज्यो कुसुम सुबासै विद्यमान गुरु।

सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस।

जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निसबस हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ माने तुम मलियागर

तू सतगुरु चाहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरों तुर आद जुगाद।

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है, मोती ता मंदर उस रहे रतनी ता होए जड़ाव, कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाव, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चियां नू, जरा इना दी गल्लां दी आवाज जे इधर आएगी तां मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच, सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।

0: Seguirá malo de rana, mala.
1: Y ojo yo de pure de pecado, la una mala boca.
2: उच्चारण कर लो पूरा
1: साबो की तलवंडी फिर एक तंबू विच गुरु गोविंद सिंह जी दूजे तंबू विच भाई मनीष सिंह